0: हेलो हेलो गोरोंगै मानियाङै दंखा हेलो
1: हेलो
0: ए दाखौ खोनाखा खोनाखा
1: फाचिन खोनालिया
0: ए
1: आं आंथ' खोनायदोंमोन
0: दा फुं गाहाम दाखो दै लामसगो सोंतिनि सालायनाय जे सिनि जाक्रा बरकनो सों गरम रुनानै दै जाक्रा बरक सिनि बागै बोसोग नांगौ माने अबनो दैनै कक्लाम सादि
1: कस्त' खालायनाय जोंनो फुनुखाजों जोंनि बर' बाहायखे दावनाय बाहायखे जानाय बाहायखे जिनाय आब' बर' बेयो प्रदर्शक जों लाबा फुनाय आब'नि बर'नि ककनो जों खोनानांगौ बर' फुनुगौ जोंनि बर'नि मर्यादा बिनि बिनि सन्मान बिनि नम्रता बिनि धैर्यशीलता बिनि कर्तव्य बर'नि समाजनि कर्तव्य बिनि क्राइम बिनि कर्म क्राइमनि बिनि मं गाबोन सत्य निस्था आबो सपक चरित्र सबगुलि सिन चरित्र बिसिन गाहाम खालामनो बर फुरुंगु भाग्य दानाय भाग्य नुनाय भाग्य दंनाय बहने बरबाय सहित्र क्रम भाबा बहनु उपर क्रम भाग्य बाहे बुतंनाय आबो बिबां बर बरसनि प्रथम गुरु प्रथम सिन मास्टर आइ दुआ बहनु कोनो सुखनांगु ऐ
0: ओमके तिनिहाय असालो दाखक नोंखै निनि साय जाक्राकुक आगि रग नों बेलायखे मानिअ तिनिहाय दिन नों बन बरम याफारना मुसुं आबहाय मुं रग नों खुनादा मुसुं
1: ओ आबो तिनि आगि सिन थागुर अक्सावो सिनि आबो फुङा जि थ्रिखेबे पारा जत तमन बर गुया बेराय बक फुनुखौ आबो बो नायो ona nang mot age apti samung hamya takrai ti moti samung tak thangni moti buni hamya kong buni hamya gwale mong sune mong din dak ahankar khamna awro khamya awro ni ti mot nomro ta dojyo abong kaam kulum abong ko ni ko man chi ti kai ton ni ni samung ni dai to pal ka ni buni hamya na kai te mo bagi kok ta sadi 앞뒤를 하여 딱 하게 되니까 좀 보려야 되니까

0: बबार जरिया अंगना बगे अम हाइक नायकानिक हाइक जिन तलथाम हेकाबाने खागजारगन मस जिन खागे जायमानो हेकाबा जे बड़ रग मसकाय बंगने रंग रागरान मसू बड़ब बंगने हाथी रग बंगने मसो फाली रंग रागरी मानो आशेक जरा जिन खाना लाइक दिन हूँ मसो कायमान रगे कक तब खाना लाइन कक थम रग
1: आओ तीन कक्थम पैलियान आनिया फंग तीन सिमी साल सी सालमारी जरार टेपानिया ब्लक हाबानक बस्कांग सालथाम बगे लुकु हामक्राय सिबिर संजा जगान अ सिबिर हास्ते हाफांग तई केंद्र हाफांग जोदा जोदा हामक्राय गनां तंगब तंगरकन तैनाय सेब्र जगान आबनो कारीब सिबिर एस सी एस टी मेरिज सार्टिफिकेट आधार आयुष्मान कार्ड रग बहनो रजागान तई आबनकारी जोदा जोदा सार्टिफिकेट बहनो याफार जगान ओंखाय तीन निसिमी सालथाम सालमी अ सिबिर जतन फायने सेब सब नाना बगे कगम कैसाओ सकल जाखा
0: आनी आगब अमहन अब हंगाई मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी ने तैफांग केंद्र हाफांग বিশি চিনে পৌমানোরগে হাসতে নিয়ে যত ঠাই রগনো জনকল্যাণ শিবির হেকাবা লোক হামক্রাই শিবির সংসা জাগাই তঙ্গ মিয়ানি সিমি চেঙেরে জাখা অবহঙ্কায় আগরতলানি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন অব অঙ্গানে এ তালনি সালচিত শালমারি জড়া
1: आओ इनके आबन कारे लुकुरक तंक चांग तई बायबचारी मथांग तरना बगे खोआई महकुमा भारत बांग्लादेश आरी बारा मीटर रो किसीसा लुकुरक थांगलाई सुथानी माना बक्सिन जाखा ओ माना बक्सिन मूंग जरा साखला जाखा सानजा एबा हर दाम चारनी सिमी तई फूंगनी दाम बा जरा ओ साखला जाक जरा ओ तुमूंग खरक बानी सै गबां बरक वाइसाबाई थांगलाई सुख्लाई के तई बरक यागो तुमूंग सैकेल चेन लाथा तई कुबुक मानी तई पेरनाई है आबाई मानी रग तुमूंग तैजाक रखे मानजाखे बरक सकाओ गराक माजरा रजाकनाई हिनी बहनो सकलाई जाखा ओ दागीमूंग बस्कांग जुलाई तालनी साल चीसनी एबा सत्र तारीख जरा फ्रांगजागी तंगान हिनी सकलाई जाखा गे सबरक ओ दागीमूंग फातरा तंगनाई हबो हंके नांकुक जाक दर आबहाई साखामिया नखुंग बरक तुबुंग थांना नांग तंखांके बरक साखाओ अ दागीमूंग तंगलाक तई हास्ते पुलिस सूपार नि एबाखेबा हांकर नाइकल फांगनि गसीमूंग मानजाक अबहाय नांकुक जाक सामुंग गदाल जाक बरक रग बहायन अ दागीमूंग फातरा तंगानो तई पुलिस CRPF, VSF, বড় কহাইন ও দাগিমুং ফাতার তঙ্গান সাকলাই জাকা

0: आओ है के है ना है आबो है ना ते केशा तंगो आबो हंकाई करबुक महकुमानी भारत बांग्लादेश आरी आम चायो बो है ना 300 मीटर एवा थाम रा मीटर बो है ना ओ बो है ना लोकुरोकनी थांगलाई सुथानी किसी सा माना बॉक्सिंग जाका आबो हंके जोरा हंके साजाक का सांजा दाम दोग निसिमी ताइने फुंगनी दाम दोग जोरा इंका ओ जोरा छाकलाई जाकनी बिशिंगो और बो है ना खरक पानी छाई कबांग बरक तुमुंग ना बुथुप के तंखे एबा थांगलाई सुखलाई के एबा याको दा शेंग लाठा साइकिल चेन एबा पेरनाइजर मानै आबोहाय बुमारक तंखांके बरकनि साखाव बहायनो ग्राक माजरा रजाकनाय हनि साखलाय जाका तै आबुनो कारै पुलिस बाहिनि सीआरपीएफ बीएसएफ बरक सिमिनो ओ जरा साजाकनि बिसिङो आरो थांलाय सुखलाय माननाय तै आबुनो कारै तुमुंनो साखामनि नखुंनि बरक नांगुक मानि बागै नखना नाङै तंखे बरकनि साखाव बहायनो ओ दागिमुं तंग्लाक नैनै साखलाय जाखा बरक राइदानि फातार तंनाय हिनि साखलाय जाखा ओ जरा हंगाय बिसकां जुलाइ तालनि साल चिथाम एबा 13 तारिख जरा सा फुनां जाक तंगान हनै ककमु कायसो साखलाय जाखा
1: अबहायनो आनिया गबो कायसो तंग अब हंगाय सिपाइ जला जेला जेला दं आरोनि हांकर दागि फां कम गासव साखलाइसिका हरनि दामचारनि सिमि फुङाइ दामबाजरा थांलाइ सुखायनाय लुकुरुकनि भाजि केसासे माना बक्सिन जाखा बरंनि तंखाजां तन्नानि नना हारायन अबहंखाय बि एन एस एस 2023 163 एक न रगै अदाकिमु साखलाइ जाखा केबो खरकबानी लायै बुथुबखायै कक सालाय मांगला हायाखाबा थांला सुखाय मांगला तै दासें एबा कबुक मानै तै बेखाक जांनाय मानैर लगे दै मांगला तै अबरक दागिमुंनि बिसिङो जे गलाया बरक ओंखा पेरामिलिटारी तै नायमोथांगो सेबक खालायनायर पुलिस र তাই পুলিশ সুপার তাই দরনাঙ্কি সাকামনগো থাকাই রক তাই কেরঙ্গ সেবক খাইনাই রক বরক ও দাগিমুংনি বিশিঙ্গ খবজাকলা যে বড় রক ও সাকলাই যাক দাগিমুংন গসি উইন হাইরিয়া বরংন কেরংনি রাইজাতে মাজরা বেরজাকন ও দাগিমুং তঙ্গন নিশাই নিচিদক তালনি ই জুন তাল জরা
0: आओ है के तबुक संग कक्तुम खाना बाई के बा सेबोगो बरक तलांगमणि को खाना लायन सेबोगो बरक तलांगमणि कगो आनि याफाउ तंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नि बिशिंगो बेबागै बुकचा चुकथाय एपेंटिस नि बागै तलांग जाखनाय 7150 जन आबुनि बागै ऑनलाइन नि बिशिंगतै कयलाय यासाक जागै तंग अबो तिनिनो पाइथाक सालमारि अबनि बागै कयलाय रनानि बागै केन्डिडेट नि उमरंना नांनाय 28 एबाखेबा 28 बोसोरनि बिसिङो ताइ खातिजाक बोसोरनि बागै ताइ किसिसा गोबां फानो जोगानो अबनि बागै तालो दरमाय रजागानो 15,000 खलायने एबा 15,000 खलायने अबो बिसिसानि बागै কন্ট্রাক্ট বিশিংতেই তেলাং যাক নাই মুচুং নাই লোক রক্ন তিনি বিশিঙ্গন তিনি শারীরিক দাম বানি বিশিঙ্গন অনলাইন বিশিঙ্গ ফর্ম ফিল আপ খাইনানি বাকি সাকলাই যাকা আও হিংকে ইসং আসুক জরা তো খানা লাইকা সেবক বরক তেলাং মানে

तेरी जुल्फ उड़ेगी तो घटा छा जाएगी, घटा छा जाएगी तो पानी बरसेगा। तेरी जुल्फ उड़ेगी तो घटा छा जाएगी, घटा छा जाएगी तो पानी बरसेगा, पानी बरसेगा तो मन तरसेगा, मन तरसेगा तो मुँह।

0: 带着你当托你爸的。爸就说了我带给下吃蒙古生把后来烫了些呢。爸就说我那个的大部分的国度当那把他心里生蒙古塞的嘛那不生个生带给下咋个我把后来些呢。还有还是来是来应该爸应该今年生蒙带给下生蒙古生把后来些呢。Bong ka Englando asayu tay bono pula Simon duo hayung kotorno o hayung o hangka sotoni nyahau hayakaba gravity nati tay sa hanya hay sungmung ang saiknar pina bo Englando asayu bini asaymani hangka England tay bono pula o hani sotonani hayakaba gravity tongkuni bono pula sao.아보록사보아우하녀하이꼭두기야삭부름부름너스라이스라이잉야응의정카하이너랑꼭두또바이엔이던거야삭파는세땀자리스라이스라이잉야아바이마망너응의탕거바이때이세야삭이날래내요저라오바사보바똥피할로
1: 디볼까함메담
0: 아우디폴카함하냐아오즈라울람서고사번가사가르디
1: 어눈드런이런정
0: 아우한바이람서피로하냐하이
1: 한바이너너버
0: 나건차리다시니승몽니
1: 승몽땀땀니
0: 아우보비니아사이마니한카잉랜다이보노뿌이라오하니오하용거돈니다서돈나니하야케바그래베티동구흔이보노뿌이라사이마노다이사이만루오
1: अच्छा अच्छा अबो हमके तो न्यूटन का
0: आओ बेला ने हम भाई
1: हम भाई ननो
0: आओ बेला बेला ने हन्यो हाय सिने ताकु रंजनो हम भाई आफारो आबुनी पुरा बुमुंखा सर आइजक न्यूटन सिंग आबुनी가시아땀나게고토마부사승크나워보제프루아펠부팡돌아워아수구정고아소라워아펠비니사카워글라이파요하네피아바보노가리대부승사이마노땀하네뭐승도사이마노하도기팅세아본바게이오하도기팅세타이어너가용그방만은북사한가땅의북사파신거탕야위와땅의하파신거파이하니뭐완숙대완숙대아보이어하니쳐던니판동하니뭐라그사이만가대사이만르카아보노보이라제승가나마니고트마다피아바부스저때야보아니스라이스라이엔카노롱너스라이스라이게사이크나르만가보탕사이만리야하니피아바안카아티히니카나오뭐부팡도라숙동프로빈사가부팡부타이클라이레파이아분보레너모완수귀땅가이아잉북사파싱탕야위바땅가이양파이헤니아분이야글로한케한케아보응고흐네

0: 하스저로 대인으로니 카 독서만에서 사무노로 카나바이케 파디 곡도 파신 거 탕이 날래네 사보바 곡도 것도. 할로.
1: 할로.
0: 할로. 람소고디 볼까 하며 벌어.
1: 할로.
0: 그날 동우 사번 거 사가르디.
1: 안 뛰어나니 크리스노 모헌 무라싱시.
0: 아우 뛰어나니 크리스노 모헌 무라싱.
1: 예, 안 그 사번 거 사나이. 신디 괜찮아. 한 번에 두 번에. एक दूसरे के लिए बनी
0: आओ हम बने तुम बने
1: एक दूसरे के लिए बनी क्या
0: आओ आओ
1: हम भाई
0: आओ जरो हन्य है हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए नी खनाना हने चीनी ताकुक सहर का फलित है किसे सगिया सगे नली है अब उन्हें अगलो नरों ने खाना तोक सग मनेर सामुं खनाना ने फाजिंग थाली है हेलो
2: हेलो
0: लाम सगोती पर का हम या फरो
2: इंदे पर का हम बाय
0: आओ सागरे साबन का
2: आई को गोयम फंग एसान
0: एसान गोयम फंग ने
2: आओ को कसिंग कन खाने बाय
0: आओ सादी
2: एको मानिक बाय बिपासा सानी
0: मानिक बाय बिपासा
2: रसा नंग गाना तंखे आनु खतंग मन
0: आओ नंग गाना तंखे दाको
2: बाय
0: हाय सादी
2: इको कोई जना टिकट खने
0: आओ आओ सादी दो
2: इको बाय अंजलि बाय कोनिका इंदारे ब्रिजेस
0: आओ
2: गे बाय श्रीति
0: हाय
2: इंदारे रविंद्र अंचना बाय
0: दो दो आको हम बाय फाजोजरो सिंगते खोकदु यासगे वई खनालाने सिंता खोक सपोनि खनातोक जाक मानिरे सामुंगनो हेमलता मोबिनी

0: पांडवों ने पश्चाताप के लिए तप किया था महाभारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया। अब उनका सर वो नेपाल में और धड़ियां रह गया।
1: जय हिंद साहब।
2: जय हिंद।
0: बस दादो 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर बाकी।
3: अरे किस माटी का पला है, थकता नहीं तू?
0: महादेव की मूठी खा रखी है।

0: हम जानते हैं दुकानदार का बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे हमसे, लीजिए।
1: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता, लड्डू के बदले न जाने कौन जायदाद मांग लूं।
2: भाई भाई, मेरे की मदद करिए भाई, आपने गलत बात है।

0: घर तक आ गए और हैरो बा वो भी हो गया।
1: कुछ रिश्ते जब जरूरत में ऐसे मोहब्बत के रिश्ते हो। चुबा मुझे और एक बात और बता दो, आपकी हलवाई की दुकान तो मैं हड़प कर ही रहूंगा।

0: मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। हमारा मानना है कि एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए।
1: मंत्री बखरा नरेंद्र मोदी ने तुईदुल मुंबई थाना बीसीचिनियो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास नाहर मुंबई बारर खुचा जाकनाय हमकरानि लामबो बुसखांगै दङ करिजा हुकबार खालायनाय रग बुरैताय सिख्ला हदानि हामकरायाव गोबां लख हामकराय रुगजाक तांबो तां मुख थांग जासरि जाका तां बेखरेब बाबायो हाफांनि बायमुंखक नै चिनै पयेन्ट नै रासाय रुजाक रांग सगैक्या मेट्रो रेल नेटवर्क बागबाहाय बाग्राव बागबाहाय तै बसं नेटवर्क सा पयेन्ट ब्रिदक रासाय किलोमिटार गोबां फलक जाका भारतनि रेलवे बाजेटनि चुबा चुबाय बाग चुकुहाय बांखाताय ताबो काय सारा दक्षिणै बन्दे भारत ट्रेन सेपचल खायजाक दङ आवबाय थांलाय चुमुं सायम लाइटे संखा असा समुं नुइ छाय ब्रिसिसिनि बिसिं बिसिंग हामसा जाक भारत सनाम ति समुं थंखरा खलायाव नहिने खर्चा जाका एडिसिनि बुसखां भिलेज कमिटि चमरिन बागै तिनि पाइथाक बुटा लिस्ट गारि जाखा जुदा जुदा ब्लकनि रिटार्निं अफिसारक राजनैतिक बदलनि आदंनि यागो पाइथाक बुटा लिस्टनि कपि याफार जाखा यां भिलेज कमिटि चमरिन तै खना सुप्रिम कोर्टआव खनारिमुं ओंगानो हायुं बेरनि जुगा सालनि पान्डा बुबाक संजाजागोन अतालनि बोसखां साल नैथिसाव कलकाताव हिनै छाखा केन्द्रनि आयुष मन्त्री प्रताप राव जादव मन्त्री बख्र नरेन्द्र मोदी तैदुल मुम्बाइ अ पान्डा संजाजागोन बसाखा ताकलाय बिसि जुगा सालनि कक बथमांका काहाम लांमानि बागै जुगा जुगा बेबाक उमरनि लकरकनि साखाम लांमा काहाम थिति तंनाब नांमा बादजाय याचागो मन्त्री तैबो साखा नुइसाय चिब्रि बिसि जाति संग भारत ककचाप याचाक जागमागुल जुगा हायुं गोनाङै लुकु स्वभाव सोलाय जाका आबनो कारैब पान्डा बुबाक संजाकना सोखां आलायदा जुगा सेचन्न खरक बुरैरानि गोबां लुकुरक आरो मानजागै गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड सोनामका हा कतनि मन्त्री बख्र नरेन्द्र मोदीनि टुइट फांबाय इन्डिया हाफां थांनाय बिसिचिनियो तंखर मुथां मुंटाय तंसुंनाय तंमुं सामुंनि ककमुं दिसाना बागै जुदा जुदा जर गोबांमा सामुं बोतां नाहारका अ सामुं बोतांन तंखर मुथांना लगि लगि हुकबानि सामुंटाय बलं आलं सुनाम तंखर मुथां थानि भारत हा कतर सिरि चिटिनि सामुंन जरातै सोखांबारिनि सेबरि उइतंगो आबनर्गे ककथुम कायसा खोनाबायदि
2: खातिमुंनि वानसक मुंन मुख थां जासारनाव तंक संलुकुरकनि बागै तंसकनाय याप्रि नाहारनानुतै हजाक मुंख्लायना चायतक मुंन अ बिसि चिनैनि लामो खुर्सा जाकथतक आबनि बिसिं मिशन लाइफ एबा लाइफ स्टाइल फर एनवायरनमेन्ट चेतननि सेबबाय तंक संलुकुरकन तंखर गोदाल जाक तंनानि लय ख्लायमुं खुर्सा जाकथतक आबनो कारिबो पिएम कुसुम तांबोतांनि सेबबाय हुकबार बाबायो सालनि जों फेरांन सामुंगप नांमा बांग्रोवै तंखर गोदाल जाक सक मुं सामुंगप नांनानि खाबाजारवै दङ दे बाबायसाबखागो एक पेर मा कि नाम सामुंबो तांनि बिसिं बुमानि बरम फांजारा कायमा सेबबाय गोखरां भारत नाम तिसानानि कबक मुं रमै तिसा जाखा तंखर खाति नारगना रिनिवेबल एनार्जी न फार्मुं तै लुकुमानजाक मुंनि सेबबाय कायसा तंसकनाय थिनां नाम तिसानाव हाफांनि अचेतन नांमानि बारजा यासागै दङ ककतुमा खतलनि सिमि आं बिपुर्णा आकाशवाणी आगरतला
1: मन्त्रीगरा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा साखा बोरैबो सारनि सोरमुंन फुवारथानिथाय काहामखलाय सोरमुं रिना बागै हास्थ्य गोबांमा साखथाब जाका दिनै आगरतलानि सिसु बिहारों नग क्लास नाइननि पढ़ने जुग्रंन बाइसाइकल बागमानि पान्डव ब कक साखा बतायबो साखा टाकलाय हास्थ्यनि जुदा जुदा रों नग पढ़िनाय जुग्रग्न काय ब्रिसिसा साय चारा बाइसाइकल बागजागोन मन्त्री अक्रा तायबो साखा परिनाय रक ड्राग्स ने हामजा बाबायनो तै हजाक तंना कबका पानो कुबनि बिसिं मानजाका आगरतला पुर नायख्रेन मेयर दीपक मजुमदार नायखुनि तांफां मिलिन्दा रामटेक आकसं आकाशवाणी आगरतला केन्द्र ककटुमा खनाय तंबायो आकाशवाणी ने ककटुमानि आपडेट माना बागै लग इन खलायदि www.newsonair.com कम न्यूज ऑन एयर एप्स टाइ ट्विटर और फेसबुक प्लेटफॉर्म एयर न्यूज एलर्ट्स यूट्यूब नाजी न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल आपनो कारिबो आकाशवाणी आगरतला केन्द्र ककमा अपडेट मानाखाय ट्विटर बा एक्स हेंडल आकाशवाणी न्यूज आगरतला फेसबुक एयर न्यूज आगरतला टाइ यूट्यूब आकाशवाणी न्यूज आगरतला नायना नांगोन हुकबार मंत्री रतनलाल नाथ साखा कोताल तांगसेरनि बिसिंथे हुबार खालायतानि

0: पाले।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: শ্রোতা বন্ধু, এতক্ষণ শুনছিলেন গান অন্তহীনের পর্ব। এবারে শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সমাচার সন্ধ্যা।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU

0: इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एआई चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत एआई पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: एक्सप्रेस स्कीम के डेली लोन नए बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता डेली लोन के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.delhi-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित

0: वार्षिक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह

0: पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
1: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित

उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।